ओम से हुई पांचों तत्वों की उत्पत्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।

मैं हूँ विशाल आकाश, असीमता ही मेरा गुण, भरता अपने में उच्च विचार, रखो हमेशा स्वच्छ मुझे, करो सब मिलकर एक काम, अच्छा सोचो अच्छा सुनो और मुख से लो अच्छे नाम, होगी बरसा प्रभु कृपा की, डर की ना होगी कोई पुकार, मुझे रखोगे अगर स्वच्छ सुपोषित तो हर लूंगा मैं सब विकार, तो हर लूंगा मैं सब विकार।

समस्त जगत की प्राण वायु झुलसाने वाली गर्मी में वातावरण को मैं शीतल बनाऊं। ना करो मुझे प्रदूषित, ना करो मुझे प्रदूषित। अगर चाहते हो खुशहाल जीवन तो चलाओ वृक्षारोपण अभियान। गुण है मेरा शीतलता, जीवन देना ही मेरा काम, जीवन देना ही मेरा काम।

मैं हूँ तेजोमय प्रकाशमय, मेरी है अमित पहचान, अंधकार है शत्रु मेरा, ये डर जाए देख मान, प्रकाश ही है मेरा जीवन, मृत्यु है अंधकार, मैं देता ऊर्जा सबको, प्रसन्नता देना मेरा व्यवहार, देवताओं तक पहुंचाता मैं तुम्हारे यज्ञ विचार, करो सदुपयोग मेरा मानव, ताकि जीवन बने खुशहाल, ताकि जीवन बने खुशहाल।

मैं हूँ जल, सेवा है मेरा धर्म, निर्मल है मेरा मन, शीतलता देना मेरा कर्म, रखिए जलीय चक्र संतुलित, मुझे ना होने दो प्रदूषित, करो मेरा सम्मान मानव, मैं दूंगा तुम्हें जीवन अतुलित। साई ने चलाकर जल अभियान, दिया मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान, दिया मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान।

0: वहन करती मैं भार समस्त सृष्टि का, मुझे ही कहते हैं धरा। करो समर्पित जीवन अपना, मैं ही हूँ भू भूमि धरा वसुंधरा। न मांगू मैं मानव तुझसे कुछ भी, पर तू ना कर मेरा तिरस्कार। कर सेवा मेरी माँ की तरह, क्योंकि मैं ही देती तुझे ढेर सारा प्यार। मत भूल तो मानव भारी और ऊंचे पर्वत भी विश्राम मुझी पर पाते हैं। लंबी और बलवती नदियाँ मुझ पर ही होकर बहती है। ऊंची मीनारें विशाल भवन सभी खड़े हैं मेरे ऊपर। जीवनदायी फसलें भी सब उगी हुई है मेरे ऊपर। और ये क्या आज मेरी ऐसी अवस्था, जो तो पूछता है मुझे तो कर रक्षा मेरे इस प्रदूषण से। रख मुझे स्वच्छ सुशोभित लदी हुई पुष्पों फलों से, लदी हुई पुष्पों फलों से।
1: पर ये क्या मानव सृष्टि का सरताज अपने मानवीय मूल्यों सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा को भूलता जा रहा है। पंच तत्वों का महत्व, इनकी पवित्रता एवं स्वच्छता पुरातन काल से चली आ रही है। इनकी महत्वता का वेदों में भी उल्लेख है, शास्त्र में भी इनकी व्याख्या है। माना ऋषि मुनियों भी देव तुल्य इन पांच तत्वों को निस्वार्थ भाव से की इनकी आराधना और सेवा, फैलाया चारों दिशाओं में इनकी महिमा को। पंच तत्वों का संबंध सिर्फ प्रकृति से ही नहीं अपितु हमारे शरीर से भी है। हमारा शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश का गुण है शब्द, शब्द सुनते हम कानों से। वायु का गुण है स्पर्श, और स्पर्श करते हम त्वचा से। अग्नि का गुण है शब्द स्पर्श और रूप, जो देखते हम नेत्रों से। जल का गुण है शब्द स्पर्श रूप और रस, जिसका पान करते हम जीवा से। पृथ्वी है परिपूर्ण इन पांच तत्वों से, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जिसका अनुभव करते हम नासिका से। कितना सुंदर संबंध इन पांच तत्वों का हमारे शरीर से। पर ये क्या कलयुग के प्रबल प्रभाव से, कलयुग के प्रबल प्रभाव से।

मैं हूँ कलियुग, सत्य त्रेता द्वापर युग के बाद आज संपूर्ण संसार में मेरा ही राज है। समय समय पर करता हूँ मैं अपना ही बोध। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल और पृथ्वी सब मेरे ही है सेवक। ये मानव मेरी कठपुतली है। सत्य त्रेता द्वापर युग के बाद आज संपूर्ण संसार में मेरा ही राज है। समय समय पर करता हूँ मैं अपने

0: मैं ही छाया चारों, मुझसे ही जुड़ी है इनकी हर बात।
1: अब समझो आप, प्राकृतिक आपदाओं का कारण है मानव का लालसा, स्वार्थ और तृष्णा। अगर रखता मानव खुद पर संयम तो पृथ्वी पर ना होती भौगोलिक उष्णता, जलवायु परिवर्तन और युद्ध।

0: मेरा तो दम घुटा जा रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही। युद्ध से सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है, कहाँ जाएं, चारों तरफ धुआं धुआं, आग की लपटें, बड़ी बड़ी मंजिलें गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, पानी भी पीने लायक नहीं है, रासायनिक पदार्थों से पानी भी प्रदूषित हो गया है, अब हम कहाँ जाएं?
1: क्या बात है पुत्र, इतने परेशान क्यों हो?
0: क्या बताएं महाराज, इस पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया है।
1: शांत हो वश, शांत हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान मैं बताता हूँ। ये सब मनुष्य के कर्मों का ही फल है। मानवता का अगर कर्ता पालन, भरा हृदय होता प्रेम और करुणा से,

भगवत सत्ता पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, जिसका अनुभव हम अपने चारों तरफ करते हैं, चेतन शक्ति सब प्राणियों में है, तभी हम कहते हैं कण कण में भगवान हैं।

0: अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य है, सत्य के कारण ही वायु प्रवाहित होती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं।
1: वही परम सत्य श्री सत्य साई अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं।
0: उन्होंने बताया कि जब हम पंच तत्वों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक अलौकिक प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं।
1: यह हमें वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त करने में सहायता करता है।

महाराज, अब आया हमारी समझ में प्रकृति का गुण ज्ञान। लेते हैं हम सब संकल्प, करेंगे ना तत्व को दूषित और करेंगे इनका संरक्षण और सम्मान। यही होगा भगवान श्री सत्य साई के प्रति हमारा प्रेम निवेदन।

अब आगत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदरे कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला

रैन आयर मह सब किश है, कर्मी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहार के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जाय आपे नजर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी शति जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजियानो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजियान, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

नाम जपे नामो वारादे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाहीं किस आग सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख सह प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए भाणै चलन अपणै नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखै खटै पाओ पावै आवो पावै जाओ। शास्त वेदना मान कोए आपो आपै पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक मुहावै चाड़ी खाहे। चौका देके सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए।

बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मैं रूपै थम अहन से अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवै जुगत कन पड़ाए क्या खाजै भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवै सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुगद है अहंकारे मरना। एतक मान है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवरया सब नाम जपै।

ओढ़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै, हर की कीमत ना पवै, किश कहण ना जापै, गुर प्रसादी सालाही है। हर भक्ति रापै, सब मंतन हरिया होया, अहंकार गवापै, सब किश हर का खेल है। गुरमुख किसै बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਹੰਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋ ਆਇਆ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ

रोवै दह सर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पय मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी भया। रोवै सेख मसा एक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवै राजे कन पड़ाए कर कर मांगे भिखिया जाए। रोवै किरपन संचय धन जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाए पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वरतदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब

सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दुए खेत लब वत्र द्रोग बियो हाली रह कुहेत हल भी चार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए नानक लेखे मंगे है औत जनेंदा जाए महला पहला पाओ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद हल हलेमी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग नाओ बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावै सगल विजोग पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजे पाए बोलै दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोलै गुरमुख नाम ते आई है मथ तत् कढोलै अंतर प्रगास घट चरना हरलदा टोलै आपे परम पुलाएंदा किश कहन ना जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला दूजा नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल मैं जंतो पाया नो तिना पेरो जी दे उथे हट न चलई ना को किस करे सौदा मूल ना हो वई ना को लै न दे जिया का आहार जी खाना एहो करे वेचो पाए साए रात ना पे सार करे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है महला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल नानक चेत्या चेत है चिंता बद्दा जाए नदर करे जे अपनी ता आपे लै मिलाए पौड़ी से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता आपे मेल मिलाया नु आपे दे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला वेल पंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंभ चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सूई तागा सीवै इयों पतपाटी सिवती सीपै नानक जीवत जीवै हुए पुराना कपड़ पाटै सूई तागा गंडै माहो पख किहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार काड़ तो तिसकी अप्रयापार सब दे सान रखाई लाए गुण की थेके विच समाए तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए महला पहला कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार गर्भ न कीजै नानका मत सिर आवै पार पौड़ी सो सत संगत शब्द मिलै जो गुरमुख चलै सच ते आए से सच्चे जनहार खर्च तन पलै भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चलै रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भलै आपे मिल मिलाएंदा आपे दे वड़ियाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक

होत चसा तिस बिनु ना सरै, अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो भवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै, जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवां, तन सो राग सुरंगड़े, अलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े, जो गुरमुख जपदे नाउ। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सदबलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे, करमी पल्लै पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै, हाँ सदब

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जिहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगै आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवे लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनों तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनों तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनों तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनों तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनों सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपा।